नाम ले जा रो तने ने दिखा नहीं से प्यारे चौसिया मी तया यो सूरा तुबरी शिवा ठिया।